0: राजीव आयो।
1: माँ शक्ति, आज पहली बार तुमने काम की बात की है।
2: Education.